0: की रक्षण तमो बने दे बाहर जो माता से रहता थे इनफल नो नियो बोले अफेयर तक जो था साउदी बाकुम्बा से नो ऊजा बत्ती ने बिसन
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.